0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: देखो बाप दादा, मैं चैरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा है, मैं चैरिटी कह रहा। दूसरी बात क्या देखी, क्यों का कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा। दूसरा कारण ये दिखा कि अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में दिखा, कोई बहुत रायल रूप का भी अलबेला बन दे। एक शब्द अलबेलेपन का कारण सब चलता है, क्योंकि साकार में तो हर एक के हर अरब को कोई देख नहीं सकते। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते, जो गया हुआ है कि परमात्मा की हजार आंखें लाखों आंखें है, लाखों कान है, वो अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा साथ साथ देख सकती है, कितना भी कोई छिपाए, छिपाते भी रॉयल्टी से है, साधारण नहीं। तो अलबेलापन एक मोटा रूप है, एक महीन रूप है, शब्द दोनों में एक ही है, सब चलता है। देख लिया है क्या होता है, कुछ नहीं होता, अभी तो चल लो फिर देखा जाएगा। ये अलबेलेपन के संकल्प बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं। देखना आप लोग कहते हो ना, थोड़ी लाजपत रख दो, तो बाप दादा भी लाजपत रखते। लेकिन ये अलबेलापन पुरुषार्थ को दीवार नहीं बना सकता, पास विद ऑनर नहीं बना सकता। जैसे स्वयं सोचते हैं ना सब चलता है, तो रिजल्ट में भी चल जाएंगे, लेकिन उड़ेंगे नहीं। तो सुना क्या दो बातें देखी, परिवर्तन में अगर ये अलबेलापन है किसी भी रूप से है, हर एक के अलग अलग रूप, लेकिन उस समय मुस्कुराती है, कहती है देख लेंगे क्या होता है। तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। गाना आज क्यों सुना रही है, क्यों चाहो नहीं चाहो, जबरदस्ती भी आपको बनाना तो है और आपको बनना तो पड़ेगा ही। आज थोड़ा सख्त सुना दिए क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्पररी हो जाएगा, फिर कोई बात आएंगे ना कहेंगे बात ही ऐसी थी ना, कारण ही ऐसा था, मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है। इसलिए बनना ही पड़ेगा, मंजूर है ना?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो उसमें संदेश तो मिलता है, अनुभव करके जाए कुछ
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

就这就。

क्योंकि इस शिवरात्रि पर बाप को कोई सौगात तो देंगे ना? देंगे? हाथ उठाओ। तो बाप दादा यही सौगात चाहते हैं कि व्यर्थ को समाप्त दो, बुराई बुराई के ऊपर तो अटेंशन है, लेकिन फेरत के ऊपर भी अटेंशन देना है। क्यों? पसंद है ना? पसंद है? हाथ उठाओ। पसंद है तो सब पास हो जाएंगे। पसंद है तो पसंद है।

identity, but

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कोई कोई बच्ची कहती है, बाप ने तो सर्वशक्तियां दी, लेकिन कोई कोई पूरी हो जाती है फिर आती। इसका कारण क्या? वरदान में बाप ने दी, सर्वशक्तिवान के स्मृति के सीट पर नहीं होते हो, कोई भी किसका आर्डर मानते हैं तो सीट वाले का आर्डर मानते। कोई भी शक्ति का आर्डर करते हो

Este tău geau.

up.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: dead Pacha.
1: जहाँ अप्राप्ति है वहाँ असंतुष्ट।

परिवर्तन

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने देखा कि पुरुषार्थ भी सब बच्चे करते हैं, पुरुषार्थ की लगन भी है। अपने से क्या करेंगे।

0: Cento. अपने आप अपना प्रोग्राम बनाओ, अपना प्रोग्राम बनाओ, जिसमें बिजी रखो। अपना प्रोग्राम आप बनाओ, टाइम टेबल अपना आप बनाओ, मन को बिजी रखने का। चाहे मनन करो, चाहे सेवा करो, चाहे एक दो को अटेंशन खिंचवाओ, लेकिन बिजी रहो, मन से बिजी। शरीर से बिजी तो होते हो, लेकिन मन से बिजी रहो। मन के बिजी रहने में बिजनेसमैन नंबर वन पर।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

should put in sweet corn and corn. Don't treat the majority after the nidika. जैसे तन के लिए अशुद्ध भोजन का संकल्प किया और प्रैक्टिकल कर रहे हो, ऐसे मन संकल्प करना है। कि कभी भी किसी के पृथ्वी किसी सरकार

0: अशुद्ध भावना मिटा नहीं सकते, हर आत्मा के प्रेत दिल का सने और सहयोग अपने मन में नहीं रख सकते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा तो फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो जैसे भी हो बाप तो देख खुश होता ही। बाप ने जो वायदा किया है कैसे भी लायक बना के ले जाना। बाबा माया आ गई, चिल्लाना नहीं, अपने को उड़ा देना। माया नीचे रह जाए, आप ऊपर उठ जाओ तो माया देखती रहेगी।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

假装烦恼，जब आपकी प्रकृति सूर्य की शक्ति सूर्य की किरणें साता भी है, पानी सुखाता भी, दिन से रात, रात से दिन, करके दिखाता है, फैल

sit up.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जिस भी सेवा स्थान का सेवा का वृद्धि होती है और निर्विघ्न होती है, उसका कारण क्या होता है जानते हैं? पालना। कई सेंटर्स में वीआईपी की सेवा बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन स्टूडेंट की पालना कम करते हैं। इसीलिए स्टूडेंट बढ़ते नहीं है और स्टूडेंट रेगुलर सेवा के उमंग उत्साह में नहीं रहे। क्लास करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन अपने उमंग उत्साह में नहीं है। तो ये रिजल्ट है पालना की। मुबारक।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हाथ उठा के करके दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ। हाथ उठाते इसलिए, वैसे तो बाप जाने

0: ये सोचो कि परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। अच्छा, अभी जुबान से भी किया किया तो सही ना, तो ऐसे प्रॉमिस करके फिर भी नहीं करने का तो लाइन में आ जाएगी ना। तो जब भी कोई ऐसे हो उस समय खुश होगा, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। तो जब भी कोई परिस्थिति आवे अपना हाथ याद करना, मदद मिलेगी। ऐसे सोचते हैं, हिम्मत रखते हैं, लेकिन उस हिम्मत को पानी देते रहो, बस प्रॉमिस किया बस छूट जाते। याद अपना हमेशा याद रखो, कितनी सभा है, पाप तो है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब भी बाप को टाइम मिलता है तो क्या दिल में होता है, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, अब बच्चों को टाइम मिलता तो मेरा बाबा ऐसे है ना, ऐसे है, हाथ उठाओ। अच्छा, बोलने की चीज ही नहीं है, कितना भी बोलने की कोशिश करो लेकिन बोलते हुए बोल नहीं सकता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इस सीजन में बाप दादा टीचर्स को विशेष उठाने चाहते, सब टीचर्स दिल्ली वालों का पीछे। देखो कितने टीचर्स, चौथा हाल तो टीचर्स है।
2: 2000 टीचर्स आई है, 21,000 भाई बहने आए हैं, 2000 टीचर्स आई।
1: खुश होते हैं।

Miss Teacher School. Sad.

Yeah.

0: ये मर्द क्या था करती है ना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Disco।

しちゃった。アプトチョパープケーソンズカーン。ウォーアプケーソンズカーン。

0: Sabine. Abonnentelsme. Je. Dritte Sankalapka. Abonnese.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते, प्यार से याद जरूर करते हैं, रोहण भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया। जो संकल्प करो विदाई तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगते, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार पसंद करने में आवश्यक, जिस स्वरूप में एकाग्र होने जाओ, जितना समय एकाग्र होने जाओ, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और पसंद, इसको कहा जाता है योग अग्नि। समाप्त मारने में फिर भी लाश तो रहते है ना, बस होने के बाद नाम निशान कदम। तो इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ, जिस स्वरूप में रहने जाओ, मास्टर सर्वशक्तिमान

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बेटी करवा ले, अब ऐसी तैयारी कराओ करो जो सभी जैसे बाप दादा ने कहा बेफिक्र बादशाह फिक्र नहीं तो बीमारी भी नहीं। ऐसी

0: सभी के मन में मेरा बाबा बिठा दो तो ये दवाई हो जाए। अच्छा बैठ जाओ, बहुत अच्छा सेवा कर रही है, करते चलो। विजय तो आपके साथ है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ब्रह्मा बाप को देखा, कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दातापन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते और प्यार की निशानी है कोई पांव का प्यार नहीं, लेकिन प्यार की निशानी बच्चे कमजोर होने के कारण अपने शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते। आप सहयोगी बनो, किसे सिर्फ शिक्षा से नहीं, आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या सुभावना के कोई नहीं सुन सकता। ये तो फाइनल रिजल्ट है, शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ उसको बहुत प्यार भी करेगा, जिससे वो समझ जाते थे तो पापा का प्यार है और प्यार में गलती महसूस था कि शक्ति उसमें आ जाती।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

nicht.

ごちそう。

Shake Polly Monsavata Pie Lincoln Monsa Shakti and shit.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Hey,

Mm-hmm.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Some

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सेवा

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: धन तो सबके पुराने है, चाहे जवान है चाहे छोटी और बड़ों से भी कांकर कमजोर, चाहे बीमारी पड़ी लेकिन बीमारी की महसूसता कि मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, ये बीमारी को मरा देती क्यों?

por sempre.

三干了。

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

कुछ।

0: Sada, Bob Saman, Bonanaye.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

नहीं करनी पड़ती।

Christ, this one.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Sí.

ऐसे सबसे

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: विशेष

Adam Sandler.

सब इकट्ठे चलेंगे ना, अलग अलग तो नहीं जाएंगे। दरवाजा खोलने के लिए सभी इकट्ठे हाजिर हो जाएंगे। डेट मांग रहे थे।

и потекал. Yeah.

también. Que tu

जल्दी से जल्दी।

0: चलते फिरते ते ही अब मान नहीं बनना। यही बेहद का फेरा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

父。

ट्रिकल नहीं लेकिन फकोड। जान

बस एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए बेफिक्र बच्चा बना दिया। अभी

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Sss.

conozco.

Salva Casanoco. Chamacarniki. Xavier.

Siapikan nomor pot.

Si han visto el naso.

Befehl. Dritte

किसी भी कार्य में ये

0: निश्चित अनुभव करेंगे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पत्थर में अपने को नहीं रखो, स्वतंत्र।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ, याद आ रहा है परम धाम, अनादि काल से आपकी झलक फलक यारी जैसे आकाश में देखा होगा, सितारे सभी चमकते हैं, सब लाइट ही है, लेकिन सर्व सितारों में कोई विशेष सितारों की चमक न्यारी और प्यारी, ऐसे ही सर्व आत्माओं के बीच आप आत्माओं की चमक रॉयलिटी प्योरिटी की चमक

So.

就不见去德拉巴那的。

0: सारे क्लब में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रही है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जय छोटू।

छोटी छोटी एरिया वाले भी आपको लेना दे सकते। हमारा बाप आया, आपको मालूम पड़ा हमारा बाप है, क्योंकि सबका बाप है ना। तो आपने क्यों नहीं बताया? इसलिए चेक करो अपने एरिया के चारों ओर, संदेश पहुंचे, फिर आपकी जिम्मेवारी पूरी। ऐसे नहीं हो कि छोटी एरिया लेकिन है उस एरिया की है तो बचे ना। किसी

sei.

0: अपनी एरिया को चेक करो रायगढ़ के पड़ोसी से।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने ये भी देखा है कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात को विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ज्यादा बोलते हैं ना, तो जैसे विस्तार फिर क्या होता है ना, तो बीच उसमें छिप जाता है। ऐसे वो समझते ऐसे है कि हम विस्तार कर रहे हैं समझाने के लिए, लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाने चाहते हैं ना, उसका सार छिप जाता है। और बोल वाणी की भी एनर्जी होती है, जो फिस्ट बॉल होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है, दिमाग की एनर्जी भी ज्यादा बोलने वाले की कम हो जाती है। शॉर्ट और स्वीट, ये दोनों शब्द याद रखो। और कोई सुनाता है ना तो उसको तो कह देती है मेरे को टाइम नहीं है इतना सुनने का, लेकिन जब खुद सुनाती है तो टाइम भूल जाते हैं। इसलिए अपने खजानों का स्टॉक जमा करो, संकल्प का खजाना जमा करो, बोल का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना जमा करो, समय का खजाना जमा करो, गुणों का खजाना जमा करो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सफलता।

Sí.

0: लगा सफलता स्वरूप ये आज के दिन का बाप दादा का वरदान सफलता मेरा जन्म सिद्ध
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

आने के बजाय काका कभी कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता। कारण क्या होता, बच्चे रोरियान में बहुत मीठी मीठी

ます。

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: से रुका हुआ जो भी अपने को ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, सब चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी, चाहे भारत निवासी, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने, कभी कभी के नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: उम्र भी कम नहीं है। कुमार अभी सुकुमार बन गए हैं। और कुमारों के बिना से

0: Charles Patau. Komárom, képen a szintre Charles a te. Ne így Charles. Komár. Képesíste, ég bohat a csíje. Komár. Csodrát szakalap kari. Practical me last. Yok so kumar. Ulta to karenge nahi, sulta hi karenge. To kumar ho me. Dhrat sankalap ki gift hai. सुकुमारों का कुमार नहीं, सुकुमारों का ग्रुप बड़े थे बराबर ने। अभी बाप दादा की ये इशारा प्रैक्टिकल में नहीं लाए। सारे विश्व के कुमारों का ग्रुप मधुबन में इकट्ठा हो और प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर यहाँ आवे। कुमार अपना जलवा दिखा सकते हैं। कुमारों का ऐसा ग्रुप साथ ले जाओ, कोई कहाँ का कोई कहाँ का कोई कहाँ का, और डायरेक्टर ने निमंत्रण देवे सब देशों के निमंत्रण देवे, डेट फिक्स करें। कुमारों में तो बाप दादा की बहुत बहुत बहुत शुभ उम्मीदें हैं और पूरन होनी है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सकता है। अच्छा फिर बहाना नहीं बताना, ये था ना, ये हुआ ना, ये नहीं होता तो नहीं होता। बाप दादा बहुत खेल देख चुके हैं, मीठे मीठे खेल, और

0: भेजे देना, आपको तो पास सर्टिफिकेट मिल गया है ना, मिल गया है ना, कि लेना है, मिल गया है ना, मिल गया है कि लेना है, नहीं कल अब पहले मिल गया है, अभी क्या नहीं
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Oh.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: पाप में निश्चय, सभी बच्चों का है, तब तो यहाँ आए। पाप का भी आप सब में निश्चय, अपना बनाए। लेकिन ब्राह्मण जीवन में
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को तीन बिंदियों का स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाने जमा होता जाए। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा, जमा कितना है। हर खजाने का चार्ट देखा तो क्या देखा कि अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम है। समय संकल्प बोल व्यर्थ भी जाता है। समय का मैं तो चलते चलते कभी कम इमर्ज रूप में होता है। अगर सदा समय का मैं तो याद रहे इमर्ज रहे और ज्यादा सफल बना सकते हो। सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता है। गलत नहीं लेकिन साधारण ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते लेकिन व्यर्थ चले जाते। एक घंटे की चेकिंग करो, संकल्प कितने साधारण जाते जमा नहीं होते। फिर बाप दादा इशारा भी देता है तो बाप दादा को भी से बहुत देते बाबा। ऐसे थोड़ा सा संकल्प है बस, बाकी नहीं संकल्प में थोड़ा चलते संपूर्ण हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अभी अंत थोड़ी है, थोड़ा समय तो पड़ा है तो समय पर सब Suck.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप सबकी दादी निमित बनी ना, कोई कहे ना कहे, लेकिन निमित पालना के ऑटोमेटिक याद निकलती, तो जैसे दादी ने

0: इतनी हिम्मत रखना और सभी को मददगार बनाना, ये तो कमाल की भले साथ दिया लेकिन निमित्त तो बने। दादी की विशेषता क्या रही? दिल साफ, मुराद हासिल, किसी की भी बात दिल में नहीं रही और अलबेलापन देखते भी उसको उमंग दिलाया। अलबेला है, छोड़ दो नहीं, हिम्मत दिलाई। वो सभी के दिल से निकलता है मेरी दादी।
1: भाइयों को बुला रहे
0: हैं, दिल से कहते हैं ना सभी मेरी दादी। इसलिए आप लोग भी ग्रुप बनाओ, जो लक्ष्य रखे दादी चलो बाप समान तो बनना ही है, लेकिन कम से कम दादी के समान पास ना दे। ग्रुप चाहिए एक नहीं, एक दो के साथी बन, ऐसा वर्तक के स्वरूप देख फिर बाप दादा उस ग्रुप को विशेष गिफ्ट देंगे।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम
0: सुंदरम
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Bart।

Gelati.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: चेक करो, कभी दुख ले लेते हो, कभी कभी थोड़ा थोड़ा। फॉलो

Son.

ईशान कौन होगा? जहां किचरा होगा वहीं परेशान होंगे ना। तो उस समय

personality. Because some

कभी कभी हो जाता।

Fishes. So.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Psst.

0: oyentes. ¡Ach, qué loco!
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Chocas son

Yes.

मेरा नहीं कह सकते। जीवन के संस्कार शूद्र जीवन।

primeiro.

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज शिवरात्रि पर हर एक

इस बात के ऊपर अच्छा ध्यान है क्योंकि अभी आपने भी

0: शरारती बच्चों को पहुंचेगा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

chico.

दृढ़ संकल्प करो कि

बच्चों को जब टेंशन में देखते हैं ना, तो सोचते हैं अभी अभी इस बच्चे का फोटो निकाल के भेजे, सारा

Esa diga y diga.

कुछ पर्पस तुम्हारे सरकमस्टांस के परवाह, बहुत टेंशन में रहते हैं आजकल दुनिया में। खुश कर

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी किसमें होशियार बनेंगे? मनसा से नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना। इसमें कोई कारण नहीं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, ये कुछ नहीं, सब कर सकते। बच्चों ने खेल खेला था ना, दौड़ लगा देखा खेला था ना, अभी इसमें दौड़ लगाना, मनसा सेवा में दौड़ लगा। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ, मैं मनसा सेवा कर रही हूँ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: संगम युग पर ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। जब सेवा में कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना, तो साथ भी भूल जाते हो और फिर तक जाते हो, फिर बाप को याद करते हो तक अभी क्या करे। जब बाप दादा आपको सदा उठते जागते कर्म करते सेवा करते सोते साथ देने के लिए आइए परम धाम जोड़ के क्यों आए? साथ देने के लिए ही तो आए हैं। इसीलिए आप सबके सहयोग देने के लिए ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त बने, व्यक्त रूप में और अव्यक्त रूप में सहयोग की रफ्तार बहुत तीव्र है। इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर लिया। शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सही

saqueo que te entiendes.

ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिमान सात का ऑफर कर रहा है, ऐसी ऑफर सारे क्लब में मिलेंगी नहीं मिलेंगी ना, तो बाप दादा भी साखी हो के देखते हैं। अच्छा देखें कहाँ तक अकेले करते हैं। संगम युग के सुख और स्विचों को इमर्ज रखो, बिजी होने के कारण बुद्धि बिजी रहती है ना, तो स्मृति मर्ज हो जाती। आप सोचो सारे दिन में किसी से भी पूछे कि बाप याद रहता है, बोलता है बाप, तो क्या कहेंगे? ये तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन ये मर्ज रूप में रहता है या मर्ज रहता है? स्थिति क्या होती है? ये मर्ज रूप की स्थिति और मर्ज रूप की स्थिति, इसमें अंतर है, है, है अंतर, है पांडव, है अंतर। तो क्यों नहीं इमर्ज रूप में रहते? इमर्ज रूप का नशा शक्ति संयोग सफलता बहुत बड़ी है। याद तो भूल नहीं सकते, क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं है। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा।

危险。

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुराई सुनाओ। क्या कहते हैं, ऐसा काम को चलाना था ना, इसीलिए काम चला लिया। बाकी मैं समझती हूँ, समझता हूँ, करना नहीं चाहिए लेकिन करना पड़ा, कर लिया। लेकिन कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ना, तो चतुराई नहीं करना। पाप को भी बहुत री जाते हैं, गलती करते हैं ना, फिर बाप दादा को ऐसी ऐसी बातें, बाबा आप तो रहम दिलो ना, आप तो किमिया की सागर हो ना, बाप को भी याद कराती है, तो आप कौन हो? आपने कहा है ना, मेरे को सुना के खत्म कर दो। लेकिन मैं सुस्ता से सुना के खत्म, एक अखियर पका करते हो, सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से स्व को परिवर्तन करके फिर सुनाओ। रिजाते बहुत है, आपने कहा है ना, बाप को भी याद दिलाते हैं, आपने ये कहा है ना, आपने ये कहा है ना, बड़े चतुराई करते। आप ही चतुराई नहीं करना, हिम्मत रखना, करना ही है के नहीं करना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी सेवा और स्व दोनों का बैलेंस ऐसा सेवा स्थान बनाओ जो सबके आगे एक एग्जाम्पल हो, जैसे म्यूजियम होते हैं ना, तो सब एड्रेस देते हैं ना, शहर में कहाँ भी जाओ तो एड्रेस देते हैं, यहाँ जाओ यहाँ जाओ। ऐसे जिसको शांति चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो मगुत्सा चाहिए, वो आपके एड्रेस में पहुंचे, फैल जावे। अगर शांति का वाइब्रेशन लेना हो तो यहाँ जाओ, अगर हिम्मत भरनी हो तो यहाँ जाओ। ऐसे स्पेशल बनाओ, ठीक है ना। बाकी तो सब म्यूजियम तो जाता, अध्यात्मक म्यूजियम भी है, भाषण भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई विशेषता ऐसी स्थान की बनाओ जो प्रबंधों में और पैर में भी ये प्रसिद्ध हो जाए कि ये चाहिए तो यहाँ जाओ। क्योंकि आजकल लोगों को सुनने की आदत तो है लेकिन अनुभव करने की आदत नहीं। तो अगर अनुभव करने जाए तो आपके पास ये प्रसिद्ध हो जाए कि अगर आपको अनुभव करना है तो ये एड्रेस।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सब दादियों को देखे खुश होते हैं, क्योंकि दादियों ने निस्वार्थ सेवा की है।
2: साक्षात्कार होना है,
1: और झुंड सृष्टि पर आ गए हमको उठाने के लिए। एक दो को देखो फरिश्ते स्वरूप में, ये फलाना है, ये फलाना है, नहीं फरिश्ता है। ठीक है, दादियों से ये सीखो, शुभ भावना शुभ कामना दो। स्टॉक है आपके पास, लेकिन देने में ताता कम बनते हो। नेगेटिव न देखो, न सुनो, न बोलो, न सोचो। गुस्सा के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अच्छा है ना, दादियाँ स्टेज पर आती है, सबके चेहरे मुस्कुराने लगे थे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Sunday.

उसका खेल देख मनोरंजन

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: What happened?

देखो जे करो काम काज करते भी याद किसकी है, कापी किसको करते हैं, साकार में क्या दिखाई देता है बाप के दिल में मैं अब मेरे दिल में बाप। ऐसे है ना, हाथ उठाओ, ऐसे पक्का है। वैसे कहते काम काज करते भूल जाता है, लेकिन यहाँ

0: और बाप के दिल में कौन, मेरे बच्चे। ये संबंध संगम युग की सौगात।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप देखते हो, आपका गायन है मर्सीफुल, आप मर्सीफुल देव देविया और देवताएं हो ना, हो
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: टीचर को क्या चाहिए? सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हो, लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक तो अच्छा। और जो साथी है वो अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो, पापा की पंडाली अच्छी हो, अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल रखती है थोड़ी। फिर समझती है
2: जो
1: जिसकी कैचिंग पावर और वाणी में किसमें मिठास होता है और किसमें स्पष्टता होती है। बोलेंगे एक बात, आप भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, लेकिन योग की बात छोड़ो, सिर्फ बोल में भी किसमें मिठास होता है, किसमें स्पष्टता होती है, किसमें कैचिंग पावर होती है। तो यहाँ के वहाँ के मिसाल वगैरह कैच करके सुनाती है। इसीलिए उनका नाम भी हो जाता है, कौन चाहिए फलानी चाहिए, कौन आवे फलानी है, चाहे योग में भले कच्ची भी हो, लेकिन इस बार नंबर फाइनल नहीं होने, फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं दियोंगा कि इसने कितने भाषण किए या इसने कितने स्टूडेंट बनाए, सेंटर बनाए, योग्य कितनों को बनाए। सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं, लेकिन आत्माओं को योग्य कितनों को बनाए, नाम हो गया दी सेंटर की इंचार्ज और तीस में से सिर्फ यह नाम हुआ, सिर्फ नाम होता है कि फलानी के तीस सेवा केंद्र, लेकिन नंबर इसे नहीं मिले। फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्ति रही उसी प्रमाण मिलेंगे। इसीलिए ये भी चाहिए चाहिए कदम कर दो, नहीं तो योग नहीं लगेगा। रोज ही देखते रहेंगे कि फलानी जगह हुआ, मेरे को फिर भी नहीं मिला, अभी देखो परसों यहाँ हुआ, कल वहाँ हुआ, आज यहाँ हुआ, तो योग लगेगा या गिनती होती रहेंगी। तो मुख्य बात है निश्चय को, जो यथारत निश्चय उसको पक्का करो। कहने में तो कह देती हूँ मैं आत्मा, और पाप सर्वश्रेष्ठ

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा, इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट है, आफरीन भी देते हैं, लेकिन अभी सेवा में अन्नपूर्ति कराना क्षमा के ऊपर परवाने बनाना चाहे सहयोगी बनाओ चाहे साथी बनाओ, कुछ बने ऐसे अनुभवी परवाने तैयार कर, सहयोगी बनाए है उसकी मुबारक है और बनाओ। विशेष बाप दादा
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: एक

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा के पास बच्चों के पत्र वाचित किया, बहुत अच्छी अच्छी मत किया क्या हम अब से 108 के माला में अवश्य आएंगे। बहुतों के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र भी आए हैं और रोल ध्यान में भी बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं बाप ने आप सबके
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कोई भी कर्म आरंभ करते हो कंट्रोलिंग पावर, रोलिंग पावर वाली आत्माओं की साधारण कर्म शुरू हुआ। समृद्धि स्वरूप से कर्म आरंभ न करना और साधारण स्थिति से कर्म आरंभ करना, उसमें

0: जैसे हद के मर्तबे वाले अपना कार्य करते हैं तो कार्य के सीट पर सीटों के फिर कार्य आरंभ करते हैं। ऐसे अपने मालिक बन के स्वराज अधिकारी किसी फिर हर कार्य करो इस मालिक बन की अथॉरिटी की चेकिंग रिजल्ट सफलता सहजन
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहां है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आजकल चाहे संसार में चाहे ब्रह्मांड संसार में हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं, एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत। मानो 95% किसने संस्कार के वश परवश होके नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसकी 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, ये बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी ये ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगे ये क्यों किया, ऐसा थोड़ी किया जाता है, ये नहीं करना होता है, पहले ही बेचारा संस्कार के वश कमजोर है, तो वो नर्वस हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ, ये बात बहुत अच्छी है आप में, ये आप बहुत अच्छा कर सकते। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे तो वो परिवर्तन हो जाएगा। हिम्मत दो, परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया, आपकी कमी सुनाई, आप भिखारी हो, आप गंदे हो, आप ये होगा, आपको समृद्धि दिलाई, आप आत्मा हो, और इससे

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चे और मेहनत और कब मेहनत मुक्त बनेंगे, ये संगम युग ही है जिसमें जाओ, जिम्मेवारी बाप को दे दो।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

Sabika. Yo te penduro. Aunque aunque samne. Oh,

Please.

Hello.

Suruhani. Exercise me. Physical.

0: Mann. Exercise. Sada. Tigring. Jesse.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अगर कोई व्यर्थ वा विकारी सोपन लगाओ का सोपन आता है तो अवश्य आया वाह कपिल भी फिर रत्न पत्तों का वर्णन करते करते सुनाने
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा तो बच्चों को एक सेकंड भी नहीं भूलता है, बाप एक और बच्चे अनेक, परंतु अनेक बच्चों को भी एक सेकंड भी नहीं भूलते, क्योंकि सिक्की लदे हो। देखो कहाँ कहाँ देश विदेश के कोने कोने से आपको ढूंढा, आप बाप को ढूंढ सके भटकते रहे लेकिन मिल नहीं सके, और बाप ने बिना बिना देश कस्बे जहाँ जहाँ भी बाप के बच्चे ढूंढ लिया, अपना बना लिया। गीत गाते हो ना, साथ देखी न देश देखा न रंग देखा, सबके मस्तक पर एक ही रूहानी रंग देखा, ज्योति बिंदु डबल फॉरेनर्स क्या समझते हैं। साथ देखी बाप ने, काला है गोरा है, शाम है सुंदर है, कुछ नहीं देखा, मेरा है ये देखा। तो बताओ बाप का प्यार है या आपका प्यार है, किसका है? दोनों का है। बच्चे भी उत्तर देने में होशियार है, कहती है बाबा आप ही कहते हो कि प्यार से प्यार खींचता है, तो आपका प्यार है तो हमारा है तब तो खींचता है। होशियार है बच्चे भी, और बाप को खुशी है इतना हिम्मत उमंग उत्साह रखने वाले बच्चे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जो भी बातें ऐसी आवे जो बेकार आने नहीं चाहिए, लेकिन आ जाती है क्योंकि पेपर तो होना है ना, तो क्या करेंगे अगर ऐसी कोई बात आवे तो बाप दादा को दे देना। देना आता है ना, लेना तो आता है, लेकिन देना भी आता है ना। छोटे बन जाना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कोई भी चीज पसंद नहीं आती है तो क्या करते हैं, मम्मी ये आप संभालो। ऐसे ही छोटे बन के बाप को दे दो, फिर अगर आवे आएगी। बाप दादा ने देखा है कि बहुत समय रखी है ना, तो छोड़ने से भी फिर आती भी है, लेकिन अगर आवे भी तो यही सोचना कि दी हुई चीज यूज की जाती है क्या। देना अर्थात आपके पास आई तो अमानत आई, आपने तो दे दी ना तो आपकी रही नहीं। अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए, आपको मदद मिलेगी तो ये मेरी नहीं है, ये अमानत मैंने दे दी, इसमें फायदा हो जाए क्योंकि समय कम है और पुरुषार्थ आपको तीव्र करना। जो भी आए है मेरा बाबा, तो जब मेरा बाबा कहा तो और कोई मेरा है क्या, बाबा ही मेरा है ना। तो बाप पर अधिकार रख करके अमानत समझ के बाप को दे दो, अपने पास आने नहीं दे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: और आप सोचो, ब्रह्मांड आत्माओं की निजी संस्कार कौन से? संस्कार बनाओ, मेरा निजी संस्कार कौन सा है ये सदा याद रखो। वो तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया। बाप अच्छा लगता है, यही कह रहे हैं ना मन में। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय के स्याही से दिल में समा जाती है। जब कोई रावण के संस्कार के वश होती है और फिर भी कहता रहता है, बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार। बाप पूछते हैं कितना प्यार है, तो कहते हैं आकाश से भी ज्यादा। बाप सुन करके खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे हैं।

फिर भी बाप कहती है कि बाप का सभी बच्चों से वायदा है। जब बाप कहा मेरा बाबा दिल से अगर एक बार भी बोल दिया फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा तो बाप भी कहते हैं जो भी हो जैसा भी हो मेरा ही।

0: ले तो जाना ही है, सब बाप चाहते हैं कि बराती बन के नहीं चलना। सजने बन के चलना,
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मालिक सदा मालिक होता है।
2: कितने वर्ष से जुड़ा हूँ?
1: अमृत वेले उठ के जितने बजे भी उठ सको, तो अमृत वेले बाप को याद करके रोज बाप से आशीर्वाद लो। आशीर्वाद लेते रहो, बाप से आशीर्वाद मिलेगी, जिसे खुश भी रहेंगे, निर्विघ्न भी रहेंगे।
2: मेरे ऊपर निर्भर उनको भी आशीर्वाद मिल जाएगा, जो मेरे ऊपर निर्भर है
1: वो भी ठीक, सब ठीक हो जाएंगे। आप में शक्ति बढ़ेगी, दोनों को भी शक्ति बढ़ेगी, हो जाएगा। सिर्फ ये थोड़ा उठ के बाप को याद करके शक्ति लेते रहो। मेरा बाबा कह के और शक्ति।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
3: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: दिल में झंडा तो लहरा लिया और कपड़े का झंडा भी लहरा लिया जगह जगह पर। अभी पार्थक्यता का झंडा जल्दी से जल्दी लहराना ही है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सोने समय अपने पति को बाप दादा को पोता मिल सजा

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बच्चे सोचते बहुत है, क्या होगा, ये होगा वो होगा, ये होगा वा नहीं होगा, इस सोच में ज्यादा रहते, ये तो नहीं होगा, कभी सोचते होगा, कभी सोचते नहीं होगा, ये होगा होगा कब गीत गाते रहते, लेकिन संपूर्ण स्थिति में
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी बच्चों को

See.

सकते हो। ऐसी प्रैक्टिस स्वयं में अनुभव करते हो, या समझो जिस समय आपको कारने अकारने किसी बात के प्रित व्यर्थ संकल्प का तूफान आ गया है, ऐसे समय पर

समय पर एक सेकंड में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं आती तो आगे चलकर ऐसी परिस्थिति परम दाम में

பிரம்மன் மாஸ்டர் சர்வ சக்திவான் ஸ்தித்தி மேம் இஸ்

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आपस में रहे सलाह, जल्दी करो, समय लग जाते हैं ना, तो उमंग भी थोड़ा कम हो जाता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Thank you.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

やっと。

money than me.

Tim.

विश्वसेवको सारा दिन सेवा के निमित्त

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: वचपोड़ी से करने वाले का सदा नहीं होगा, कभी कभी होगा। दिल से करने वाला
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। सारे दिन में ये ड्रिल करो, मन की ड्रिल, शरीर की ड्रिल, तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते हो, करते रहो, क्योंकि आजकल

साथ-साथ मन की एक्सरसाइज।

स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान कार्य करते फ्रिश्ट जैसे ब्रो।

हो सकता।

0: पास और अटेंशन चलते फिरते गरम करते, बीच बीच में करते जाना, तो ये प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देंगे और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिले।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: संगठन सभी जगह मजबूत करो, चाहे दो है, चाहे चार है, चाहे बारह है, लेकिन तो काफी संगठन ऐसा मजबूत हो जो दोनों

0: जैसे दादी को याद करते हैं ना, क्यों याद करते हो? उसकी विशेषता सबको अपनापन दिया है ना, ऐसे सभी को अपनापन दिया ना, तो क्यों आप सभी नहीं कर सकते हो? जैसे सभी ने अनुभव किया हमारी दादी है, ऐसे नहीं मधुबन की दादी है, हमारी है। ऐसे सभी प्रमाण एक दो में अपनापन अनुभव कर, दादी को याद करना, इसी को याद कहा जाता है समान बनना, विशेषता धारण करना, इसको कहते हैं याद। ठीक है ना, हर एक यही सोचो सब अपने अपनापन महसूस, ऐसे नहीं ये तो पता नहीं कौन है क्या है, एक परिवार है ना, दादी भी सभी सेंटर पर तो नहीं रहती थी ना, एक ही स्थान पर रहती थी मधुबन में, लेकिन सभी को अपनापन दिया, तो आप सभी भी अपने अपने स्थान पर रहते फिर भी अपनापन दे सकते। ये दिल के वाइब्रेशन अपना बन जाता है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कम से कम हर एक अपरत वेला तो मनाते होगा। जो अपरत वेला रोज जरूर मना

jaga amrit pele ka sadan to apnate koshish achhi kar rahe ho amrit pele ko लेकिन आगे भी जो अमृत वेले में कभी कभी हो वो आगे बढ़ना, क्योंकि अमृत वेला दिन का आरंभ है। उसमें जरूरी

0: सभी खुश है कि बीच में माया भी चांस लेती है। खुशी नहीं कमाना, माया आवे भी तो फौरन बाप को सुना के चेंज हो जाए। अगर बाप को नहीं पहुंच सको तो अपने निमित्त परों को जरूर सुनाओ। एक दिन से बनाना नहीं तो आदत पड़ जाए। ये अमृत वेले का अमृत पीना आवश्यक है। तो अवश्य इस समय को सफल कर।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मनसा से भी आत्माओं को आकर्षित कर आगे बढ़ा सकते संबंध संपर्क में ला सकते। मनसा की सेवा अभी कम है, लेकिन अभी से शुरू करेंगे तो अंत में कोई रह नहीं जाएगा। कभी भी अगर फुर्सत मिलती हो तो फरिश्ता रूप में जैसे ब्रह्मा बाप ने आप सभी को मनसा सेवा द्वारा आकर्षित किया, घर बैठे हिम्मत दी और चल पड़े, ऐसे आप भी फरिश्ते रूप से मनसा सेवा कर सकते। फरिश्ता बन के ये अनुभव भी बढ़ाते चलो, क्योंकि दुख की लहर जैसे सागर अचानक लहरों में बढ़ता जाता है, तेज लहरें बीच बीच में आ जाती है ना, ऐसे अभी जितना समय बढ़ता जाएगा तो बीच बीच में भी ऐसी लहर दुख की अशांति की बीच बीच में भी बढ़ती रहेगी। कोई कारण ऐसे बनेंगे जो दुख की लहर बढ़ेंगे, इसलिए औरों को तैयार करो वाचा के लिए, लेकिन फाउंडेशन पक्का हो, अपना प्रभाव डालने वाले नहीं हो, रियल ज्ञान का प्रभाव डालने। कभी कभी कभी ब्राह्मण बच्चे भी अपना प्रभाव डालने लगते हैं, बाप के तरफ कोई भी सेवा में बाप के तरफ आकर्षित पर्सनल नहीं। अगर पर्सनल अपने पर प्रभावित करते तो उसका पुण्य नहीं बनता। अच्छा,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ, हर संकल्प में
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

अभी आपके चेहरे चमक रहे हैं, ऐसे सदा रहता है। जो कोई भी देखे चेहरा बताए वो कसम

Isabel Aguirre.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पाप दादा

0: Vater, du badet Gefühle, sagt Wikibi. Bot Bade und Sonate. Jo fide choco per colpa tane. Kanesh kya hota hai, Anuman kya hota hai. Ramen kya, Bhagwat kya. भक्ति क्या कुछ पता नहीं, लेकिन कल पहले के होने कारण सब बातें कैच कर लेते, तो कैचिंग पावर अच्छी समझ जाते हैं, क्योंकि एक विशेषता है कि जो सुनते हैं उसका अनुभव करते हैं, सिर्फ सुनने पर नहीं चलते, चाहे शांति का अनुभव, चाहे खुशी का अनुभव, चाहे निस्वार्थ प्यार का अनुभव, कोई न कोई अनुभव परिवर्तन कर देता। एक और विशेषता भी है, कभी भी कोई कमजोरी छिपाते नहीं, साफ दिल है, इसलिए मेकअप कर लेते हैं। बाप दादा देखते हैं मैं जा रही विदेशी, हर साल आते हैं, भारत वाले कभी मिस भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करते। आना ही है, क्या भी करे, देखो रशिया वाले भी देखो, पैसा कम है लेकिन आर्थिक रूप बहुत बड़ी, तो विदेशों की हिम्मत अच्छी, इसलिए हर एक विदेशी को बाप दादा विशेष याद प्यार और मुबारक दे रहे, तो डबल विदेशों की कमाल बाप दादा देते रहते हैं, और
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जब भी माया कोई विकराल रूप में भी आवे, क्योंकि हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो, अब माया भी सोचती है कि ये जान गए। लेकिन कोई का खेल होता है ना, देखा है क्या? देखा है या बच्चे करके दिखाते हैं, तो समझो कि ये का खेल रही है। अच्छी तरह से मारो, घबराओ नहीं, खेल है तो साक्षी होगा। खेल करने में मजा आता है और माया आ गई तो घबरा जाते हैं। कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ बातें ऐसे होती हैं जो अज्ञान काल में नहीं होंगे लेकिन ज्ञान के बाद होगी। अज्ञान काल में कभी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा, अज्ञान में आने के बाद हो गया। घबरा जाते हैं, ज्ञान छोड़ते हैं, लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए समझो तो परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियां के अनुभवी बना। एक सहन शक्ति न्यारपन नष्ट हुआ और दूसरा सामना करने की शक्ति का कि आगे के लिए आप सीख लो। तो ये परिस्थिति, ये तो पाठ पढ़ाने आई है। घबराते हो ना तो माया समझ जाती है कि ये कपड़ा तो है, मारो अच्छी तरह से। अर्थात सब कुछ छूट गया, ट्रस्टी माना सब पाप के हवाले कर दिया। मेरा क्या हूं को कहा जाता है संप्रत स्वरूप।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा की रोआ नहीं

बन सकते।

Sí.

Okay.

sunset. Dusra na koi. Isse ekagar. Sim.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जय विदेश जी, जय भारत वंश। है तो दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे, इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

ótimo.

सुख शांति।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: समाधान स्वरूप

चैलेंज की।

Ебать.

0: डीजे। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा, पहले भी कहा है, योग सब लगाते हो, लेकिन अब आवश्यक आवश्यकता है। एक

76। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने आज अमृत वेले चक्कर लगाए, सभी

Reverti, reverti. Lekin smrti svarob. Albo

Jones.

सुरों की स्मृति रखते हैं।

कोशिश करती हूँ क्योंकि अनुभव का प्रभाव पड़ता है। तो स्वयं को जो स्वरूप स्मृति में रखते हो उसके स्वरूप

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: कौमान बनाना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ये संगम युग की सौगात, बाप और बच्चों का मिलन, सारे कल्प में एक ही बार होते। संगम युग में बार बार होती है, लेकिन एक ही संगम युग में होती है। और जीवन कितनी सरल है, कोई हठ योग क्रिया विरिया नहीं करनी है, मेरा बाबा बस। अब मेरा तो भूलता मुश्किल ही है, बाप को मेरा बना दिया तो भूलने की मेहनत खत्म। छोटी सी चीज भी मेरी होती है तो कितनी याद रहती है। बाप को भी हर बच्चा प्यारा है, ऐसे नहीं इतने बच्चे पता नहीं मुझे बाबा याद करते हैं या नहीं, लेकिन नहीं, बाप विश्व का पिता है, उसमें भी मुख्य संबंध में कौन है, आप बच्चे। एक है कितना प्यारा है, आप कहते हैं प्यारा बाबा, बाबा कहते हैं मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे। एक एक बच्चा बाप दादा के दिल का प्यारा है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी भी सच्चे दिल के सने में रिटर्न वरदान
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Daddy.

として。

seco. Seco.

चाह संतुष्ट है।

Sesame. Fire Mandalo. Sesame.

What?

Mannes.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर कोई भी थोड़ी किटकिट हो तो अभी जाके पहले घर को ठीक करना, फिर विश्व की सेवा कर सके, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं हाथ उठाया वो भी करना। शुभ भावना से जवाब नहीं देना, क्रोध नहीं करना, इससे भी फर्क पड़ जाता है। देखो यज्ञ के हिस्ट्री में ऐसे बहुत दृष्टांत है जो मारते थे, मारते हैं ना, तो बहुत मारने वाले भी माताओं की शुभ भावना से सेवा करने से वो बाप के बच्चे बन गए। तो आप भी सोचेंगे हमारे घर में तो लड़ाई होती है, मारते भी है, ये होता है वो होता है, लेकिन जब कोई बदल सकती है तो आप नहीं बदल सकते हो। शुभ भावना और अपने चलन परिवर्तन हो जाती तो वो भी नरम हो जाती, गर्म नहीं होते नरम हो जाते। इसलिए माताएं पहले अपने घरों को बच्चों को ठीक करो। अच्छा नहीं मानते हैं लेकिन प्यार से चले, गिलानी नहीं करे ज्ञान की, इतना तो हो सकता है ना। चलो क्रोधी है क्या भी है, आदतें खराब है, लेकिन ये तो कहे माता जी बहुत अच्छी, हम ऐसे है लेकिन माता जी इतना प्रभाव तो बदले होना चाहिए ना। फिर देखो सेवा कितनी फैलती है, ठीक है माता है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

क्या करने वाले बच्चे, वाह बाप के दिल में बच्चे और बच्चों के दिल में बाबा। सभी के मन में

dikait.

呼吸机接了，¡Suscríbete al canal!

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वैसे अभी शिवा से लगन है, ये बाप दादा ने देखा है कि शिवा से लगन अच्छी है। सेवा के लिए एवरेडी है, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवरेडी है। लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो, वाणी के साथ साथ मनसा क्या प्रेम स्वरूप सुख स्वरूप शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकते? ये रिसर्च करो, सिर्फ अच्छा अच्छा किया लेकिन अच्छे बन जाए तब समापति के समय को समापत कर अपना राज।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

peace.

Шарат, кит на сети.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ, रहने वाली आत्मा हूँ। और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Peace.

Sir.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

या एक सप्ताह पीछे इन दिनों में अपन ने परिचित अपने मोहल्ले वाले अपने दफ्तर के कार्य करने वाले साथी इन्हों को संदेश जरूर दो कि अगर बाप से फरसा लेना है तो ले लो, ये संदेश जरूर दे दो। आपके मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं रहे जो कहे कि हमको अभी लास्ट में क्यों संदेश दिया, थोड़ा पहले तो देते तो आप भी कुछ बना तो लेते, नहीं तो लास्ट में तो सिर्फ अब प्रभु कहते रहेंगे। आप आए, हमने नहीं पहचाना, वो लेना देते रहे। तो इस शिवरात्रि पर किसी भी विधि से ऐसा प्रोग्राम आपस में बनाओ जो पहचान वालों को संदेश मिल जाए, फिर रहा उनकी तकदीर। लेकिन आपने अपना कार्य पूरा किया तो हर एक को ऐसे किसी भी रूप में औरों को संदेश पहुंच जाए। फिर जैसी नेचर, जैसा स्वभाव, उसी परमान अपने अपने तरीके से संदेश जरूर दो। बड़ा दिन है, खुशखबरी आपको सुनाते। तो ये ओलेना निकल जाए, अभी भी प्रोग्राम करते हो तो क्या कहते हैं? ऐसे भी कहती है अभी भी कि हमको तो अभी पता पड़े, आपने पहले क्यों नहीं किया? इसलिए बच्चों का, बाप दादा का जन्मदिन है, जो पुराने है वो अपना जन्मदिन कौन सा मनाते? शिवरात्रि मनाते है ना। तो इतनों के जन्मदिन पर ये संदेश देने की मिठाई बांटो, ठीक है? बांटेंगे, बांटेंगे। हाथ उठाओ, कोई भी वंचित नहीं रहे किसी भी विधि से। फंक्शन करो या पोस्ट द्वारा भेजो, लेकिन कोई रहे नहीं किसी भी साधन से, उनको संदेश जरूर पहुंचो। वो आप आपस में राय कर तीन चार तरीके बनाओ।

0: Fratrique, me toca. Să deși să rurde. Păsăne. Aci.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कभी भी दिल छोटे नहीं करना, बड़ी दिल बड़ा बाबा, छोटा बाबा है क्या, बड़े दिल बड़ा बाबा है ना, तो बच्चों की दिल सदा बड़ी। स्लोगन है बड़ी दिल सच्ची दिल साफ दिल हर मुराद हासिल। जो भी किचरा आवे ना, किचरे की दुनिया है ना, तो कभी वायुमंडल में किचरा उड़ के आ जाता है, लेकिन किचरा अपने पास नहीं रखो। जैसे इस दूर कमरे में सोते हो और किचरा हो जाए तो क्या होता है, सफाई नहीं करो, मच्छर होते हैं, बीमारियां होती है। तो ये भी अगर मन में कोई भी बात रख ली, निकाला नहीं, तो वो वृद्धि को पाती रहती। बस बाबा, मेरा बाबा, हाजिर बाबा बंधा हुआ है। बच्चा, बाप का बच्चा, भगवान का बच्चा, याद करे मेरा बाबा, और बाबा हाजिर नहीं हो, ये हो नहीं सकता।

0: body name. The Bob Leland. Pyar ke rassi se aisa band ke rakho jo hil nahi sake. Samjha. सभी ने समझा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज का दिन प्यार का दिन है, तो प्यार में तो सबसे जो जाते छोटी मोटी बात है ना, वो परिवर्तन आप ही कर लो, कहना नहीं पड़े। समझदार तो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जो नहीं विश्व परिवर्तक बनने के लिए हर एक को निर्विघ्न बनना और साथियों को बनाना
3: विश्व परिवर्तन।

0: खुशखबरी सुनेंगे ना। सुनेंगे सुनेंगे, इसमें याद रहो। अपने नजदीक वाले साथियों को छोटा सा काम देती है, सभी को नहीं कहती।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
2: रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। सबका रिश्ता प्रभु से जुटाना, यही था काम तुम्हारा। मन से मन की तार मिली थी, बाबा बाबा कहती। दिलाराम बाबा का दादी, दिल था धाम तुम्हारा, दिल था धाम तुम्हारा।

That's...

Sí.

मनन करने के लिए, सेवा करने के लिए, होम वर्क में रोज दे दे। अगर मनन करो see.

चोट की बूंदी करने में बिजी रहे, ऐसे रोज की मुरली उसमें जारी सब Sorry.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।